सुख नारद बचन सब सृष्ट करेन सच्चै लाए सच लगे सदा सच संभालेन नानक आए से परवान पए नानक आए से परवान पए जे सगले कुल तारेन महला तीजा।

पौड़ी। मनमुख मोहगुबार है दूजै भाए बोलै, दूजै भाए सदा दुख है नित नीर विरोलै। गुरमुख नाम ते आई है माथ तत कढ़ोलै, अंतर प्रगास

सो तुद बुझई जो तुद पहाणा जंत सो दरगह सिझई जिसनो तेरी नदर हो मैं तिस गई जिसनो तू संतुष्ट कल मल तिस खई

त्यागी सुखमन पोचन हारी रे। तीर्थ बरत नेम सुच संजम रव सस गहने देओ रे। सुरत प्याल सुधारस अमृत इहो महारस पेओ रे। निचार तार चुवै अत निर्मल

अनहद बजहै शब्द अनहद बजहै सदा भरपूर। ऐसा सिमरन कर मन माहे बिन सिमरन मुक्त कत नाहे रहाउ।

चौथा सब सिद्ध साधक मुन जना मन भावनी हर त्यायो अपरंपरो पार ब्रह्म स्वामी हर अलख गुरु लखायो रहाओ हर अलख।

0: सुख है।
1: गुर सेवा सदा सुख है, जिसनो हुक्म मनाए। सोयना रूपा सब तात है, माटी रल जाई। बिन नावै नाल न चल्ली। सत

जहै दूजै भरम भुलाई है। गुरमुख जाग रहे दिन राती, साचे की लिव गुरमत जाती।

सुख दुख हीते अमर अतीता गुरमुख निज कर पाएंदा शाम वेद रिग जुजुर अथर्वण।

गुरमत कृष्ण गोवर्धन थारे गुरमत सायर पाहन तारे। गुरमत लेहो परम पद पाई नानक गुर भरम चुकाया। गुरमत

देखै अहनिस ज्योत निरंतर पेखै आनंद रूप अनूप स्वरूपा गुर पूरै देखाया सतगुरु मिलहो।

भगत हेत गुर शब्द तरंगा, हर जस नाम पदार्थ मंगा। हर पावे गुर मेल मिलाए, हर तारे जगत सबाया। जिन

जहै। अंतर मैल अज्ञानी अंधा, क्यों कर दुत्तर त्रिजय हे। वेद बाद सब आख बखाण है, ना अंतर भीजै ना शब्द पछाण है।

ना गुरमुख होवै सो सच कमावै साची करनी सारी हे कार कमाई जो मेरे प्रभ पाई हो मैं तृष्णा शब्द बुझाई।

है, आन दिन गुण रव है दिन राति, आन दिन गुण रव है दिन राति, रसना हर रस पाया, शब्द मर है सिमरन सवार है, हर के गुण हृदय उरतार है, जन्म सफल हर चरणी लागे, दूजा भाव चुकाया।

कुसंगत बह है सदा दुख पावह दुखो दुख कमाया। सतगुर बाजहु संगत ना होई बिन शब्दे पार ना पाए कोई। सहजे गुण रव है दिन राती ज्योति ज्योत मिलाया। काया बिरख पंखी विच वासा अमृत जुग है गुर शब्द निवासा। उड है ना मूले ना आव है ना जाही निज घर वासा पाया। काया सुध है शब्द विचार है।

गुण निदान मन तन महरव्या, जन्म मरण की जोन ना पव्या, दुख विनाश किया सुख डेरा, जहां तृप्त रहे आगाई है।

की है। मन प्रतीत बनी प्रभ तेरी, बिरस गई हूं मैं मत मेरी, अंगीकार किया प्रभ अपने जग में।

बद अमल छोड़ कर हो हथ कूजा खुदाए एक बुद्ध देव हो बांगा बुरगु बर खुरदार खरा।

तृष्णा थकी नान का जामन रत्ता नाई लोएन रत्ते लोएनी कन्नी सुरत समाए जीव रसायन चूंडी रत्ती लाल लवाए अंदर मुश्क चकोलिया कीमत कही ना जाए पौड़ी इस जुग में ना

हर अगम अगाधा निःचल नाम निदान है जिस सिमरत हर लाधा निःचल कीर्तन गुण गोविंद गुरमुख गावाधा।

सच शाह अडोला सिद्ध साधक ज्ञानी ध्यानिया कौन तुदनो तोले पन्नन करण समर्थ है ओपत सब पर ले करण कारण समर्थ है घट घट सब बोले रिजक समाहे सब सह क्या मानस डोले गहर गंभीर अथा तू गुण ज्ञान अमोले।

शब्द बिन कबहू न छूटस बिरथा जन्म भयो रहाओ। तन मह काम क्रोध हौ ममता कठिन पीर अत भारी गुरुमुख राम जपहो रस रसना।

पत खोई। बहले पेख पवह दिन राती हों मैं रोग न जाई। पढ़ पढ़ लू जह बाद बखान है, पढ़ पढ़ लू जह बाद बखान है। मिल माया सुरत गवाई सतगुर सेव है।

प्रहलाद आप विगड़िया, प्रहलाद आप विगड़िया, सब चाटड़े बिगाड़े। दुष्ट सभा में मंत्र पकाया, प्रहलाद का राखा हुए रघुराया। हाथ खड़ग करता

जाने। दैत पुत्र प्रहलाद गायत्री तर्पण किसु ना जाने, शब्दे मेल मिलाया रहाउ। आन दिन भगत करह दिन राती, दुविधा शब्दे खोई, सदा निर्मल है जो सच राते।

यो अड़सठ सुरसरी हम मूर्ख को हर कृपा करी जन नानक तारे हो तारण हरी पैरों महला चौथा सोकृत करनी सार जप माली हृदय फेर चले तुद नाली हर हर नाम जप हो बनवाली कर कृपा मिल हो सत्संगत टूट गई माया जमजाली रहाओ गुरमुख सेवा काल जिन काली तिस घड़िए तिस घड़िए शब्द सच्ची टकसाली हर अगम अगोचर गुर अगम दिखाली विच काया नगर लद्दा हर पाली।

रहाओ। तिन मत ऊतम तिन पत ऊतम जिन हृदय वसया बनवारी, तिन की सेवा लाए हर स्वामी तिन सिमरत गत होए हमारी। जिन ऐसा सतगुर साध नाम

जो चितविया तित बिगड़ सकाज रहाओ। ठाकुर छोड़ दासी कौ सिमरह मनमुख अंध अज्ञाना, हर की भगत करहें तिन निंदा है निगुरे पशु समाना। जियो पिंड तन धन सब प्रभ का, साकत कहते मेरा अहम बुद्ध दुर्मत है मैली, बिन गुर भवजल।

0: जवान।
1: निकट बुझ है सो बुरा क्यों करे, बिख संचय नित डरता फिरे, है निकटे अर भेद ना पाया, बिन सतगुर

अंतर वस्त दिसंतर जाए, बाज गुरु है परम पुलाए। जिस मस्तक कर्म लिखया ललाट, जिस मस्तक

मेरी सखी सहेली सुनो पाए, मेरा पिर री सालू संग साए। ओ अलख ना लखिए कहो काए, गुर संग दिखायो राम राय। मिल सखी सहेली।

गुरमत खोज परे तब पकरे तनसाव तरास उबरया। पाखंड परम उपाव कर थाके हृदय अंतर माया माया साधु पुरख।

ओडा कूप गोज खिन काढ है, जो ओडा कूप गोज खिन काढ है त्यो सतगुर वस्त लहाई है। जिने ऐसा सतगुर साध ना पाया ते त्रिग त्रिग नर जीवाई है, जन्म पदार्थ पुन्न।

पई बसंत महला पंजवा रोग मिटाए प्रभु आप पालक राखे अपने करथाप शांत सहज ग्रह

तेरा सतगुरु सुख सहज से ती कर जाते हर आपे खेले हर आपे देखे हर आपे रचन रचाया जन नानक गुरमुख जो नर खेले सो जिन बाजी कर आया बसंत महला पंजवां हिंडोल।

कुबजा उधरी अंगुष्ट तार बिदर उधार्यो दास्त पहाए रे मन तू पी हर त्याए।

मऊ तिस अर्पौ सब सुख जाई। एक निमुख प्रदर्श दिखावे तिस संतन कै बल जाई। करो निहोरा बहुत बेनती सेवों दिन रह नाई। मान अभिमान हो।

ज्यों सफरी उधर पर है बह हाटली। साध बिकार बिकार झूठ रस, साध बिकार बिकार झूठ रस,

रहाओ। चरण कमल बसाए हृदय एक स्यों लिवलाओ, साध संगत हो हे निर्मल बहुर जोन ना आओ। जियो प्राण आधार तेरा तू निछावे थाओ, सास सास समा

प्रसाद सनकादिक ब्रह्मादिक गावत गावत सुख प्रहलाद पीवत अमयो मनोहर हर रस जपना।

पंजवा तांते करन पलाह करे महाबितार मोह मद माताओ सिमरत नाहे हरे रहाओ साध संग जपते नारायण तिनके दोख जरे सफल देह धन ओए जन्मे।

अगम अगोचर अनाथ अजोनी गुरमत एको जानिया सुपार भरे नाही चित डोले मन ही ते मन मानिया। गुर प्रसादी अकथो कथिये

एक समय सब जग तो वरतै विरला एक पछाण शब्द मरै ता सब किस सूजै अन दिन एको जाने जिसनो नदर करे सोई जन बूझै होर कह

तीर्थ अड़सठ मज्जन नाई सतसंगत की तूर परी उड नेत्री सतसंगत की तूर परी उड नेत्री सब दुर्मत मैल गवाई रहाओ जाहर नवी

आठ बिहाजे जिस हर हर कृपा करे हर जन को मिलिया सुख पाइये सब दुर्मत मैल हरे हर जन को हर भूख लगानी जन तृप्त है जा हर गुण बिचरे हर का जन हर जल का मीना हर बिसरत फूट मरे जिन ए प्रीत लाई सो जाने कह जाने जिस मन तरे जन नानक हर देख सुख पावे सब तन की भूख टरे। मल्हार महला चौथा।

सतगुर हर हर नाम दृढ़ावै, हर बोलहो गुर के सिख मेरे भाई, हर पौ जल जग तरावै रहाओ, जो गुर कहो जन पूजे सेवे, सो जन मेरे हर प्रभ पहावै, हर की सेवा सतगुर पूजहो, कर कृपा आप तरावै, परम भूले अज्ञानी अंधले।

अनकबार ब्रह्म है बहुजोनी, एक न काहूं धरते रहाओ। त्याग स्वामी आन पौ चितवत, मूड मुग्ध खल खरते। कागर नाव लंघ है कत सागर, कागर नाव लंघ है कत सागर, वृथा कथत हम तरते। शिव विरंच असुर सुर जेते, काल

कान हर बरस सगल जग छाया, पय कृपाल प्रीतम प्रभ मेरे आनंद मंगल सुख पाया रहा। मिटे क्लेश तृष्ण सब बूझी।

चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी दुख निवारण नारायण सगल भगत जात है सुख।

हंस बला नित उठ उठ जूझ मिक्री जय। काम क्रोध नगर महंस बला नित उठ उठ जूझ करी जय। अंगीकार करहो रख ले वहो गुर पूरा काढ़ कढ़ी जय। अंतर अगन

कहया ना चित धरै कर आचार बहु संपौ संचय जो किश करै सो नरक परै एको शब्द एक।

अर्थ कह साध संग स्नेह सत्यं सुख्यं बसंत नान कह मिथ्यंत देहं खीणंत बलनं बरदंत जरुआ।